0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर डॉट कॉम।
1: Pepe's Piri Piri presents the Unstoppable Tour 2027. After a sold-out tour this year, the supremely talented Shreya Ghoshal is coming back once again for a very special concert to celebrate the O2's 20th birthday on the 4th of June 2027 at the O2 London. Tickets are selling fast via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley, produced by Grace Entertainment and Rallo Events, radio partner Sunrise Radio.
2: This Halloween at Lidl, we won't be beaten on price on our pumpkins. We've got munchkin pumpkins,
3: medium pumpkins, large pumpkins,
4: and even monster pumpkins.
2: Get yours in store now. Lidl, more to value.
5: Price match in most major supermarkets till 31st of the 10th. See lidl.co.uk/spendless. Selected stores while stocks last. Exclusions apply.
6: Remitly se apne priyajano ko paise bhejein aur दूर रहकर भी उनकी दिवाली को खुशियों से रोशन करें। चाहे त्योहार की तैयारी में मदद करना हो, जश्न का मजा दोगुना करना हो या थोड़े ज्यादा पैसे भेजने हो, उनकी दिवाली का हिस्सा बने चाहे आप जहां कहीं भी हो। लाखों लोगों का भरोसेमंद रिमिटली ऐप पैसे भेजने का एक तेज, किफायती और सुरक्षित तरीका है ताकि आप उनके साथ खुशियां बांट सकें। रिमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले मनी ट्रांसफर पर खास ऑफर पाएं। Remitly UK Limited को FCA द्वारा विनियमित और अधिकृत किया जाता है।
7: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जी टीवी HD पर देखिए गंगा माई की बेटियां। स्नेहा की जबाब पे आ गए हैं उसके जज्बात।
1: हमारी कहानी में तो हर चीज की शुरुआत सिद्धू ने की है, हमेशा वही पहल करता है ना। क्या बोले उससे,
2: हमारा भाई सिद्धू तो पहले ही तुम पे लट्टू है, देखो कैसे कीचा चलाता है।
0: पर क्या किस्मत को मंजूर है उनके प्यार की कहानी?
3: सिद्धू पूर्वी पांडे की जिद है।
0: गंगा माई की बेटियां आज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: With LV, I can get my car insurance from just £299, just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount, because insurance is simple when it's me and LV.
5: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less November 2025 to April 2026. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required.
6: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
7: यस बेबो।
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ग्रीन स्ट्रीट, ईस्ट लंदन, एंड ब्रॉडवे, साउथ हॉल।
8: एंड नाउ द वेदर।
9: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
10: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
11: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: House. Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: Well done to Amara. New what

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. Make every day grand.
1: इस फेस्टिव सीजन में मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम, शायोना, जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं. सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस. मठिया एंड छोरा फली 3 for $4.50 और घुघरे का तो जवाब नहीं. अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर्स. विजिट आवर न्यू हनी पॉट लेन स्टोर फॉर ऑल योर स्नैकिंग नीड्स इंक्लूडिंग फ्रेश हॉट फूड. ऑल्सो सिलेक्टेड लाइंस अवेलेबल एट मॉरिसन्स, टेस्कोस एंड सेंसबरीज थ्रू आउट द दिवाली सीजन और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम shayonauk.com.
2: And now, the weather.
3: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
4: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T&Cs and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
5: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
6: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
1: One last coffee comes everywhere. For one last time, watch Coffee with Karan from 14th October on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
7: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Ultra Vitamin D, the sunshine vitamin from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: आनिया आमिर ऑन द वोकल्स, पैब्लो ऑन सनराइज, निर्मल जैन, हाय वेलकम, वेलकम टू द शो. आप कहती हैं कि यू विल नॉट बी एबल टू सिंगल आउट एनी परफॉर्मेंस बाय विद्या बालन बिकॉज यू डू थिंक दैट शी वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल. यू आर टॉकिंग अबाउट द डर्टी पिक्चर हियर ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक आई विल हैव टू अग्री. She gives her heart and soul to each performance, right? I haven't seen The Dirty Picture, but my favorite Vidya Balan film will have to be Parinita. Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today. Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya.
1: Craving a warm dessert? Saute sliced apples in a little ghee for 2 minutes. Sprinkle generously with Suhana's jaggery powder and cinnamon until sticky and caramelized. Serve with warm vanilla ice cream for an effortless weekend treat.
0: This daily food feature was brought to you by Suhana Foodies. Try their kappa poha, jaggery powder, turmeric latte mix and spice mixes like butter chicken and paneer makhanwala. In stores nationwide. Suhana, maza aa gaya.
2: Hey, it's Sanjay Sanj. Catch me on the weekends from 1 o'clock.
3: Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
4: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ. स्नेहा की जबाब पे आ गए हैं उसके जज्बात.
5: हमारी कहानी में तो हर चीज की शुरुआत सिद्धू ने की है, हमेशा वही पहल करता है ना. क्या बोले उससे?
6: हमारा भाई सिद्धू तो पहले ही तुम पे लट्टू है, देखो कैसे कीचा चलाता है.
4: पर क्या किस्मत को मंजूर है उनके प्यार की कहानी?
5: सिद्धू पूर्वी पांडिक की सिद्ध.
4: गंगा माई की बेटियां आज शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
7: Quality food Diwali Dhamaka 2026 brings you unmissable opportunities to shop, save and win amazing prizes, including a brand new car, 2 luxury holidays for couples, 5 1-gram gold coins and plenty more. Scan the QR code in store to enter the draw and enjoy festive offers across all quality food stores. T's and C's apply. This Diwali, be ready to treat your family and friends to Mama Ji and its wide range of delicious treats, cookies, cream rolls, khari, khakra, naan khatai, bakri and rusks, all available at Quality Foods this festive season. Mama Ji, traditional taste with love.

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
1: जी पाजी।
0: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: सर जी प्लीज, मैं फोनो फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
0: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
3: हेलो
2: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू है ना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
2: सर जी आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
0: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय
4: Visit the Gold Bank, 215 The Broadway, Southall, 0203 500 1111, goldbank.co.uk.
5: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5

0: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल कर जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल भेजने की सबसे सही जगह कौन सी है।
1: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
0: जी बिल्कुल।
2: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
1: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
0: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
1: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
0: बिल्कुल, आप ऑडियंस पूछ ले सकती है।
3: गोल्ड बैंक।
1: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
0: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
5: दिस टाइम ऑफ ईयर मॉम्स ऑलरेडी प्लानिंग द मिठाई, योर आंटी इज काउंटिंग डाउन द डेज। गुड थिंग वेस्टर्न यूनियन इज फास्ट एंड इजी बिकॉज़ दिस फैमिली डज नॉट वेट। सेंड इन मनी डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट, मोबाइल वॉलेट और फॉर कैश पिकअप। सो दिवाली इज एग्जैक्टली एज इट शुड बी। वेस्टर्न यूनियन, शेयर द लाइट like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
6: This Halloween, you'd be bats to go anywhere other than Aldi. There's everything from Cadbury's Heroes to Swizzle Sweet Tubs and British Pumpkins, perfect for carving. Sink your fangs into trick-or-treat essentials from 39p. So, after dark, fly to Aldi!
7: This is Sunrise, the UK's biggest.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Coming up, it is Heed from Jab Tak Hai Jaan along with his son. Pani Pani with Badshah and Asta Gill coming your way. Keep it locked.
1: Welcome.
2: No, nothing for me. Bas chai.
1: Of course. But try this.
2: All right. You got me. One toasty.
3: Britannia crispy toasty. This festival, grab great in-market offers. Keep something for every bas chai guest. इस फेस्टिव सीजन में मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम शायोना, जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं. सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस. मठिया एंड छोराफली 3 for $4.50 और घुघरे का तो जवाब नहीं. अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर्स. विजिट आवर न्यू हनी पॉट लेन स्टोर फॉर ऑल योर स्नैकिंग नीड्स इंक्लूडिंग फ्रेश हॉट फूड. ऑल्सो सिलेक्टेड लाइंस अवेलेबल एट मॉरिसन्स, टेस्कोस एंड सेंसबरीज थ्रू आउट द दिवाली सीजन और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम shayonauk.com.
4: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy, because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union. Share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
5: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: celebrating 36 years of excellence. Sunrise Music. This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online? Enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply.
3: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
0: This is Sunrise, the UK's biggest.